चंदन जगत पर आनंद तार नमक चल कियो प्रकाश फिर अंगद कियो दान अकत कृपा किया पंचभूत बस कीने जम तर खास गुरुवर गुरु श्री सत्य हर जुगरा की भक्त अगन देखत कत चरण कमल जास सब पिता मानियो मन तब की तयो प्रसन्न राज जो खगत ते गुरु राम दास राज जो

0: राग परार परारी महला पंजवा करपेला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिलहार जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो संत जना मिलहार जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा कर नाम दवायो शब्द सुख हर नाम बढ़ियाई गुर प्रसाद नानक मत पाई सर्व सुख हर नाम वदाई गुर प्रसाद नानक मत पाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: Raghavan Panasri, fifth mela, first house.

0: mehla panjva tal vich tin vastu payu sat sat to kavi charu amrit nama takar ka payu jisaka sabasa adaru jeko kave jeko unche tiska hoi udaru eva sataji ne jai nit nit rak or taru tam sansar charan lagatariya sab nanak brahma pasaru shlok mehla panjva tera kita jato nahi meno joga kitoi men nirguniyare ko guna nahi apitars payoi tarsipya meheramato hui satguru sarjana milya nanaka nam miletan jivan tanamantiva hariya pavri tete tu samrata jita kwenai o tete rirak agni udramahe sunke jamke dutinai कुछ बाक मास गाओ कर शब्द पर पाए जिनको लगे प्यास अमृत सह काय कल में हो पुन गुन को बन काय सब सेनों के पास मियाल शाह शाह बिरता कोई न जाए कि आवे तुत आए अंतर गुर आराधना जीवा जप गरनाओ नेत्री सतगुर पे करना श्रवणी सुनना गरनाओ सतगुर से तिरत्या तरके पाया था कहो नान कृपा करे जिसने ए वज दे जग में उत्तम कार्य वेर लेके के रखे रखन हारा आप उभारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हो आप जा मनो न विसारियन साध जा के संग भव जल तारियन शक्त निंद के दुष्ट के माय बिदारियन जिस साहब की टेक नानक मन माय जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए This is how you take Nanaka Manamai, just a simmered sukahoe, sagale duka jai. Why Guruji Kakalsa? Why Guruji Kifate?
1: I can lead the meditation unless you want.
0: That'd be great.
1: Okay.
0: Could I bring the cordless mic over?
1: No.
0: Okay.